ये देख भाई, खाली थिएटर, अमीरों के टशन, 2000 की कैपेसिटी में 20 लोगों को बिठाया हुआ। ओ देख, ओ साला गोल्ड जैकेट पहन के नाचा।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम असुरु नमा दो वगत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम ईशान हमादो वागुतु
1: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह